ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 19 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे। गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। अमरीकी और ईरानी नेताओं के हस्ताक्षर के बाद संघर्ष समाप्ति से जुड़ा समझौता ज्ञापन प्रभावी हो गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी फिलहाल खत्म कर दी है। समझौता ज्ञापन के अनुसार अमरीकी सेना 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि हस्ताक्षर होने के बाद से 225 करोड़ बैरल तेल क्षेत्र से गुजर चुका है। उन्होंने कहा, ईरानियों ने लगातार दूसरी रात होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी जहाज पर गोलीबारी नहीं की। अब तक वे अपना किया वायदा निभाते आए हैं। नाकाबंदी के संबंध में सेंटकॉम ने 1 दर्जन से अधिक जहाज़ों को हमारी समुद्री नाकाबंदी से गुजरने की अनुमति दी है, इसलिए हम भी समझौते के शुरुआती हिस्से के अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का बयान प्रसारित किया। खामेनेई का कहना है कि शुरुआत में समझौते को लेकर उनकी राय अलग थी, लेकिन ईरानी जनता के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दी। समझौते की कुछ शर्तें शायद पहले से ही खतरे में हैं। समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयां तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया गया है। हालांकि लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बृहस्पतिवार को इजरायली ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए। अमरीकी ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना से जुड़ी अटकलों के चलते जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले करीब 2 वर्षों के न्यूनतम स्तर तक लुढ़क गई। 17 जून को समाप्त हुई अमरीकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद डॉलर के मुकाबले येन की कीमत लगभग 161 पर पहुंच गई। बैठक के दौरान फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि कुछ नीति निर्धारकों का अनुमान था कि इस साल के भीतर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इससे इस धारणा को बल मिला कि जापान और अमेरिका की ब्याज दरों के बीच अंतर निकट भविष्य में कम होने की संभावना नहीं है। बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में येन की बिकवाली और डॉलर की लेवाली हुई। आखिरी बार जुलाई 2024 में येन की कीमत में इस स्तर तक गिरावट आई थी। एनएचके को पता चला है कि जापान सरकार वित्त वर्ष 2040 तक एआई और अन्य प्रमुख सामरिक क्षेत्रों में लगभग 3,700 खरब येन यानी 20 खरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। सरकार की विकास रणनीति परिषद ये योजना तैयार कर रही है और इसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की ओर से निवेश किया जाएगा। परिषद ने जापान की भावी आर्थिक सुरक्षा के लिए 17 अहम क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें एआई और सेमीकंडक्टर, पोत निर्माण और अहम खनिज शामिल हैं। अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी निवेश किया जाएगा। निवेश रणनीति को और विस्तृत रूप देने के लिए परिषद की बैठक अगले सप्ताह के शुरू में होने की उम्मीद है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। मोदी ने पश्चिम एशिया में जहाजों पर सवार चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग का आह्वान किया। उनकी ये टिप्पणी ओमान के निकट इसी महीने के शुरू में एक व्यावसायिक जहाज पर हुए अमरीकी हमले के बाद आई है, जिसमें भारतीय चालक दल के 3 सदस्य मारे गए थे। मोदी ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे चालक दल के सदस्यों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे। इस पर अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, ये एक कठिन पेशा है, ऐसा हमेशा से होता रहा है, लेकिन हम सब मिलकर काम करते हैं। कारोबारी मुद्दों के कारण भी भारत और अमरीका के बीच संबंध जटिल हो गए हैं। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल की खरीद के कारण भी भारत पर भारी शुल्क लगाए थे। जापान के अणु बम उत्तरजीवियों का समूह निहोन हिदांक्यो अगले साल ये निर्णय ले सकता है कि समूह को जारी रखा जाए या भंग कर दिया जाए। हिबाक्षा के नाम से जाने जाने वाले उत्तरजीवियों की काफी उम्र हो चली है। परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इस समूह को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो में बुधवार और बृहस्पतिवार को समूह की नियमित आम बैठक में समूह के भविष्य पर भी चर्चा हुई। सभा में एक प्रस्ताव ये रखा गया कि जो लोग हिबाक्षा नहीं हैं, जैसे उत्तरजीवियों के बच्चे और पोते पोतियां, उन्हें समूह जारी रखने की अनुमति दी जाए। दूसरा प्रस्ताव ये था कि जब हिबाक्षा उच्च पदों पर सेवा करने में असमर्थ हो जाएं, तब समूह को भंग किया जाए। बैठक में समूह की क्षेत्रीय शाखाओं के भविष्य से संबंधित एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य हिरोशिमा और नागासाकी स्थित संगठनों को स्थायी नागरिक समूहों के रूप में बनाए रखना है, जबकि अन्य को क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर तय करने का अधिकार देना है कि वे अपना संचालन जारी रखना चाहते हैं या नहीं। इन प्रस्तावों पर अगले 12 महीनों में चर्चा की जाएगी। अगले वर्ष की नियमित आम बैठक में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे जाने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर जापान के हेयर सैलून गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए ग्राहकों के बाल ठंडे ठंडे शैम्पू से धो रहे हैं। यामागाता प्रीफेक्चर में लगभग 300 हेयर सैलूनों ने बृहस्पतिवार से ये सेवा प्रदान करनी शुरू की। ग्राहकों के बाल धोते समय फ्रिज में रखे मेंथॉल शैम्पू या बर्फीले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओनुमा कोइची ने करीब 20 साल पहले इस ग्रीष्मकालीन सेवा की शुरुआत की थी। यामागाता शहर में उनकी दुकान ग्राहकों के अनुरोध पर उनके सिर पर कसी बर्फ छिड़कती है। ये सेवा 18 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। ओनुमा के अनुसार गर्मियों की ये खास सेवा देश विदेश से लोगों को आकर्षित कर रही है और वे इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये शैम्पू लोगों को ठंडक प्रदान करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान काफी अधिक रहने की आशंका है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 16वें पाठ में सीखेंगे अपनी राय बताने और समझाने का नया तरीका।

0: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो गर्म पानी के कुंड को देखने आई है जो उसमें नहाते बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी दंपति ने मिया को तस्वीरें खींचते हुए देखा और उससे बात करने लगे।
1: तो आइए सुनते हैं 16वें पाठ की बातचीत।
2: たくさん写真を撮っているのね。
3: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले मिया ने हैरान होते हुए कहा,
3: सर नहीं पाई।
0: वाह, इतने सारे बंदर।
1: वो तस्वीरें खींचने में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ पर्यटन के लिए आई एक जापानी दंपति ने उसे आवाज लगाई। पहले महिला ने कहा,
2: ताकसान शशी वो तो तेरे नोने।
0: आप बहुत सारी तस्वीरें खींच रही हैं।
1: मिया ने जवाब दिया,
3: हाय
0: जी,
3: ここは海外でも有名な温泉です。
0: ये ओनसेन विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
1: उसके बाद पुरुष ने कहा,
4: हे सो नंदा।
1: अच्छा, ऐसी बात है।
4: सर गा ओनसेन में हाइरु नो वा मेजुराशी कराने।
1: ओनसेन में बैठे बंदर आम नहीं है, इसीलिए ना।
0: तभी मिया को कुछ दिखाई दिया और उसने कहा,
3: सर नो अकाचा।
0: अरे, बंदर का बच्चा।
3: कवाई।
0: कितना प्यारा है।
1: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
0: तो आज का मुख्य वाक्य है,
3: यूमेना ओनसेन देसु,
0: यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
1: इस वाक्य में
5: यूमेना
1: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
5: ओनसेन
1: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड। और
5: डेस
1: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था, जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: कवाई
0: यानी प्यारा।
1: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
5: यूमेना
1: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं।
5: यूमेना ओनसेन
1: का मतलब है प्रसिद्ध ओनसेन।
0: ना विशेषण का उपयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। ऐसे में अंत का ना हटाकर उसकी जगह देस लगाते हैं, तो
5: यूमेना
0: से बनेगा
5: यूमे देस,
0: यानी प्रसिद्ध है।
1: अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लें।
5: यूमेना ओनसेन देस, यूमेना ओनसेन देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं।
6: गेंकी ना सारे देसु ने।
7: होंतो गेंकी देसु ने।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
6: गेंकी ना सारे देसु ने।
0: कितना फुर्तीला बंदर है ना।
1: यहाँ
5: गेंकी ना
1: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
5: सारु
1: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने, जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: होंतो गेंकी देसु ने।
0: सचमुच फुर्तीला है।
1: इस वाक्य में
5: होंतो
1: का अर्थ है सचमुच, ये सहमति दिखाता है। और उसके बाद विशेषण
5: गेंकी ना
1: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
5: गेंकी देस।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
5: गेंकी ना सारु, गेंकी ना सारु देस ने, गेंकी देस ने।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है। आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं, शांत जगह है ना? शांत के लिए जापानी शब्द है
5: शिज़ुकाना,
1: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बाशो।
1: तो कोशिश कीजिए।
8: शिज़ुकाना बाशो देसु ने, शिज़ुकाना बाशो देसु ने।
0: अब मान लीजिए आप बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं सुंदर दृश्य है ना? सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
5: किरेना,
0: और दृश्य का जापानी शब्द है
5: केशिकी।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: किरेना केशिकी देसु ने, किरेना केशिकी देसु ने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए।
4: हे
5: हे,
0: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
1: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: हे,
0: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
3: सारु गा इप्पाई,
2: ताकुसान शाशिन वो तोत्ते इरु नो ने।
3: हाई, ここ वा काइगाई देमो यूमेई ना ओनसेन देसु।
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤのトラベルガイド。
0: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
1: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
0: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
1: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
0: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
1: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 19 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। अमरीकी और ईरानी नेताओं के हस्ताक्षर के बाद संघर्ष समाप्ति से जुड़ा समझौता ज्ञापन प्रभावी हो गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी फिलहाल खत्म कर दी है। समझौता ज्ञापन के अनुसार अमरीकी सेना 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि हस्ताक्षर होने के बाद से 125 करोड़ बैरल तेल क्षेत्र से गुजर चुका है। उन्होंने कहा, ईरानियों ने लगातार दूसरी रात होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी जहाज पर गोलीबारी नहीं की। अब तक वे अपना किया वायदा निभाते आए हैं। नाकाबंदी के संबंध में सेंटकॉम ने 1 दर्जन से अधिक जहाज़ों को हमारी समुद्री नाकाबंदी से गुजरने की अनुमति दी है, इसलिए हम भी समझौते के शुरुआती हिस्से के अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का बयान प्रसारित किया। खामेनेई का कहना है कि शुरुआत में समझौते को लेकर उनकी राय अलग थी, लेकिन ईरानी जनता के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दी। समझौते की कुछ शर्तें शायद पहले से ही खतरे में हैं। समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयां तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया गया है। हालांकि लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बृहस्पतिवार को इजरायली ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए। अमरीकी ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना से जुड़ी अटकलों के चलते जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले करीब 2 वर्षों के न्यूनतम स्तर तक लुढ़क गई। 17 जून को समाप्त हुई अमरीकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद डॉलर के मुकाबले येन की कीमत लगभग 161 पर पहुंच गई। बैठक के दौरान फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि कुछ नीति निर्धारकों का अनुमान था कि इस साल के भीतर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इससे इस धारणा को बल मिला कि जापान और अमेरिका की ब्याज दरों के बीच अंतर निकट भविष्य में कम होने की संभावना नहीं है। बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में येन की बिकवाली और डॉलर की लिवाली हुई। आखिरी बार जुलाई 2024 में येन की कीमत में इस स्तर तक गिरावट आई थी। एनएचके को पता चला है कि जापान सरकार वित्त वर्ष 2040 तक एआई और अन्य प्रमुख सामरिक क्षेत्रों में लगभग 3,700 खरब येन यानी 20 खरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। सरकार की विकास रणनीति परिषद ये योजना तैयार कर रही है और इसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की ओर से निवेश किया जाएगा। परिषद ने जापान की भावी आर्थिक सुरक्षा के लिए 17 अहम क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें एआई और सेमीकंडक्टर, पोत निर्माण और अहम खनिज शामिल हैं। अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी निवेश किया जाएगा। निवेश रणनीति को और विस्तृत रूप देने के लिए परिषद की बैठक अगले सप्ताह के शुरू में होने की उम्मीद है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। मोदी ने पश्चिम एशिया में जहाजों पर सवार चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग का आह्वान किया। उनकी ये टिप्पणी ओमान के निकट इसी महीने के शुरू में एक व्यावसायिक जहाज पर हुए अमरीकी हमले के बाद आई है, जिसमें भारतीय चालक दल के 3 सदस्य मारे गए थे। मोदी ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे चालक दल के सदस्यों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे। इस पर अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, ये एक कठिन पेशा है, ऐसा हमेशा से होता रहा है, लेकिन हम सब मिलकर काम करते हैं। कारोबारी मुद्दों के कारण भी भारत और अमरीका के बीच संबंध जटिल हो गए हैं। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल की खरीद के कारण भी भारत पर भारी शुल्क लगाए थे। जापान के अणु बम उत्तरजीवियों का समूह निहोन हिदांक्यो अगले साल ये निर्णय ले सकता है कि समूह को जारी रखा जाए या भंग कर दिया जाए। हिबाक्षा के नाम से जाने जाने वाले उत्तरजीवियों की काफी उम्र हो चली है। परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इस समूह को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो में बुधवार और बृहस्पतिवार को समूह की नियमित आम बैठक में समूह के भविष्य पर भी चर्चा हुई। सभा में एक प्रस्ताव ये रखा गया कि जो लोग हिबाक्षा नहीं हैं, जैसे उत्तरजीवियों के बच्चे और पोते पोतियां, उन्हें समूह जारी रखने की अनुमति दी जाए। दूसरा प्रस्ताव ये था कि जब हिबाक्षा उच्च पदों पर सेवा करने में असमर्थ हो जाएं, तब समूह को भंग किया जाए। बैठक में समूह की क्षेत्रीय शाखाओं के भविष्य से संबंधित एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य हिरोशिमा और नागासाकी स्थित संगठनों को स्थायी नागरिक समूहों के रूप में बनाए रखना है, जबकि अन्य को क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर तय करने का अधिकार देना है कि वे अपना संचालन जारी रखना चाहते हैं या नहीं। इन प्रस्तावों पर अगले 12 महीनों में चर्चा की जाएगी। अगले वर्ष की नियमित आम बैठक में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे जाने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर जापान के हेयर सैलून गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए ग्राहकों के बाल ठंडे ठंडे शैम्पू से धो रहे हैं। यामागाता प्रीफेक्चर में लगभग 300 हेयर सैलूनों ने बृहस्पतिवार से ये सेवा प्रदान करनी शुरू की। ग्राहकों के बाल धोते समय फ्रिज में रखे मेंथॉल शैम्पू या बर्फीले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओनुमा कोइची ने करीब 20 साल पहले इस ग्रीष्मकालीन सेवा की शुरुआत की थी। यामागाता शहर में उनकी दुकान ग्राहकों के अनुरोध पर उनके सिर पर कसी बर्फ छिड़कती है। ये सेवा 18 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। ओनुमा के अनुसार गर्मियों की ये खास सेवा देश विदेश से लोगों को आकर्षित कर रही है और वे इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये शैम्पू लोगों को ठंडक प्रदान करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान काफी अधिक रहने की आशंका है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 16वें पाठ में सीखेंगे अपनी राय बताने और समझाने का नया तरीका।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो गर्म पानी के कुंड को देखने आई है जो उसमें नहाते बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी दंपति ने मिया को तस्वीरें खींचते हुए देखा और उससे बात करने लगे।
0: तो आइए सुनते हैं 16वें पाठ की बातचीत।
2: たくさん写真を撮っているのね。
3: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने हैरान होते हुए कहा,
3: सर がいっぱい।
1: वाह, इतने सारे बंदर।
0: वो तस्वीरें खींचने में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ पर्यटन के लिए आई एक जापानी दंपति ने उसे आवाज लगाई। पहले महिला ने कहा,
2: ताकुसान शाशी वो तो तेरे नो ने।
1: आप बहुत सारी तस्वीरें खींच रही हैं।
0: मिया ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी,
3: ここは海外でも有名な温泉です。
1: ये ओनसेन विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
0: उसके बाद पुरुष ने कहा,
4: हे सो नंदा।
0: अच्छा, ऐसी बात है।
4: ओनसेन
0: में बैठे बंदर आम नहीं है, इसीलिए ना।
1: तभी मिया को कुछ दिखाई दिया और उसने कहा,
3: सारू नो आकाचा।
1: अरे, बंदर का बच्चा।
3: कवाई,
1: कितना प्यारा है।
0: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
1: तो आज का मुख्य वाक्य है,
3: युमेना ओनसेन देसु,
1: यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: युमेना
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
5: ओनसेन
0: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड। और
5: देस
0: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था, जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: कवाई
1: यानी प्यारा।
0: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
5: युमेना
0: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं,
5: युमेना ओनसेन
0: का मतलब है प्रसिद्ध ओनसेन।
1: ना विशेषण का उपयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। ऐसे में अंत का ना हटाकर उसकी जगह देस लगाते हैं, तो
5: युमेना
1: से बनेगा
5: युमे देस,
1: यानी प्रसिद्ध है।
0: अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लें।
5: युमेना ओनसेन देस, युमेना ओनसेन देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं।
6: गेंकी नासारु देसु ने।
7: होंतो, गेंकी देसु ने।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
6: गेंकी नासारु देसु ने।
1: कितना फुर्तीला बंदर है ना।
0: यहाँ
5: गेंकी ना
0: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
5: सारु
0: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने, जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: होंतो गेंकी देसु ने,
1: सचमुच फुर्तीला है।
0: इस वाक्य में
5: होंतो
0: का अर्थ है सचमुच, ये सहमति दिखाता है, और उसके बाद विशेषण
5: गेंकी ना
0: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
5: गेंकी देसु।
1: तो सुनिए और दोहराइए,
5: गेंकी ना सारु, गेंकी ना सारु देसु ने, गेंकी देसु ने।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है। आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं, शांत जगह है ना? शांत के लिए जापानी शब्द है
5: शिज़ुकाना,
0: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बाशो।
0: तो कोशिश कीजिए,
8: शिज़ुकाना बाशो देसु ने।

0: 静かな場所ですね。
1: अब मान लीजिए आप बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं सुंदर दृश्य है ना? सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
2: किरेना
1: और दृश्य का जापानी शब्द है
2: केशिकी।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: किरेना केशिकी देसु ने। きれいな景色ですね。
3: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए।
4: हे
2: हे,
1: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
3: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: हे,
1: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
5: सारे ना इप्पाई
6: ताकसान शाशिन वो तोत्ते इरु नो ने।
5: हाई, ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
5: 猿の赤ちゃん、かわいい。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
3: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
1: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
3: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
1: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
3: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 सरबराही इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बुध को बातचीत की है। मोदी ने मशरक वस्ती में बहरी जहाज़ों पर सवार अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने में तआवुन पर जोर दिया। उन्होंने ये बात कबल अज़ां रवामा अम्मान के साहिल पर एक तजारती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद कही है। मस्कूरा हमले में अमले के 3 भारतीय अरकान हलाक हो गए थे। मोदी ने कहा कि आलमी समुंदरी तजारती रास्तों पर बहरी अमले के लाखों भारतीय कारकुन काम कर रहे हैं और उनकी हिफाजत हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उनके पास अमले के अरकान के गमजदा खानदानों के लिए ताज़ियत के अल्फाज हैं। अमरीकी सदर ने ये कहते हुए जवाब दिया कि ये एक कठिन पेशा है। इसके बाद उन्होंने मजीद कहा, ये हर वक्त होता रहा है लेकिन हम मिलकर काम करते हैं। भारत और अमरीका के ताल्लुकात तजारती मसाइल की वजह से भी पेचीदा हो चुके हैं। पिछले साल ट्रंप इंतजामिया ने भारत पर भारी महसूलात आयद किए थे, जिसकी जुजी वजह भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी थी। एटम बम हमलों से जिंदा बच जाने वाले जापानियों की तंजीम निहोन हिदानक्यो अगले साल ये फैसला करेगी कि इसे बरकरार रखा जाए या तहलील कर दिया जाए। बच जाने वाले इन लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है और ये सब उम्र रसीदा हो रहे हैं। इस ग्रुप ने सन 2024 में जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के हुसूल की कोशिशों पर अमन का नोबल इनाम जीता था। टोक्यो में बुध और जुमेरात को बाकायदा जनरल मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एक मौजू ग्रुप का मुस्तकबिल था। इज्तमा में पेश की गई एक तजवीज़ ये है कि गैर हिबाकुशा अफराद जैसे जिंदा बच जाने वालों के बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों को ग्रुप जारी रखने की इजाज़त दी जाए। दूसरी ये कि अगर हिबाकुशा आला ओहदों पर काम जारी नहीं रख सकते तो ग्रुप को ख़त्म कर दिया जाए। इस इजलास में ग्रुप की मकामी तंजीमों के मुस्तकबिल पर भी एक तजवीज़ पेश की गई। इस तजवीज़ का मकसद हिरोशिमा और नागासाकी में तंजीमों को मुस्तकिल शहरी ग्रुपों के तौर पर बरकरार रखना है, जबकि दीगर को ये फैसला करने की इजाज़त देना है कि वो मकामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जारी रहने या तहलील होने का फ़ैसला करें। इन तजावीज़ पर अगले 12 महीनों में गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। फैसला अगले साल की बाकायदा जनरल मीटिंग में होने का इम्कान है। शिमाल मशिकी जापान में हेयर सैलून्स ने सार्फीन को गर्मी से निमटने में मदद के लिए ठंडे शैम्पू पेश करना शुरू कर दिए हैं। यामागाता प्रिफेक्चर में हजामत की तकरीबन 300 दुकानों ने जुमेरात से इस सर्विस का आगाज किया। हजाम अपने ग्राहकों के बाल धोते वक्त ठंडे मैंथोल शैम्पू या बर्फीले पानी का इस्तेमाल करते हैं। ओनुमा कोइची के ख्याल पर मबनी मौसम गर्मा की इस रिवायत का आगाज 20 साल पहले हुआ था। यामागाता सिटी में उनकी दुकान पर सारिफ अगर चाहें तो सर पर छिली हुई बर्फ का छिड़काव करवा सकते हैं। ये सर्विस 18 सितंबर तक दस्तियाब रहेगी। ओनुमा ने कहा कि मौसम गर्मा की ये खास पेशकश जापान और बैरून मुल्क से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है और वो इससे लुत्फानंदोज होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शैम्पू से लोगों को ठंडक मिलेगी क्योंकि कई दिनों तक गर्मी ज्यादा रहने का इम्कान है।
1: और सामिन, आखिर में खास खबरों का खुलासा। वाशिंगटन और तेहरान के रहनुमाओं ने अपने तनाज़ात को खत्म करने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये मुहायदा नाफिस हो गया है। अमरीकी शराय सूद में इजाफे की क्या सारायों पर डॉलर के मुकाबले में जापानी येन की कदर तकरीबन 2 सालों की कम तरीन सतह तक गिर गई। और NHK को मालूम हुआ है कि जापान की हकूमत माली साल 2040 तक मस्नूई जहानत और दीगर अहम स्ट्रेटजिक शोबों में तकरीबन 370 ट्रिलियन येन यानी 2 ट्रिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा की सरमायाकारी करेगी। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 19 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे। गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। अमेरिकी और ईरानी नेताओं के हस्ताक्षर के बाद संघर्ष समाप्ति से जुड़ा समझौता ज्ञापन प्रभावी हो गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी फिलहाल खत्म कर दी है। समझौता ज्ञापन के अनुसार अमेरिकी सेना 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि हस्ताक्षर होने के बाद से 125 करोड़ बैरल तेल क्षेत्र से गुजर चुका है। उन्होंने कहा, ईरानियों ने लगातार दूसरी रात होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी जहाज पर गोलीबारी नहीं की। अब तक वे अपना किया वायदा निभाते आए हैं। नाकाबंदी के संबंध में सेंटकॉम ने 1 दर्जन से अधिक जहाज़ों को हमारी समुद्री नाकाबंदी से गुजरने की अनुमति दी है, इसलिए हम भी समझौते के शुरुआती हिस्से के अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का बयान प्रसारित किया। खामेनेई का कहना है कि शुरुआत में समझौते को लेकर उनकी राय अलग थी, लेकिन ईरानी जनता के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दी। समझौते की कुछ शर्तें शायद पहले से ही खतरे में हैं। समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयां तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया गया है। हालांकि लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बृहस्पतिवार को इजरायली ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए। अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना से जुड़ी अटकलों के चलते जापानी मुद्रा येन डॉलर के मुकाबले करीब 2 वर्षों के न्यूनतम स्तर तक लुढ़क गई। 17 जून को समाप्त हुई अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद डॉलर के मुकाबले येन की कीमत लगभग 161 पर पहुंच गई। बैठक के दौरान फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि कुछ नीति निर्धारकों का अनुमान था कि इस साल के भीतर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इससे इस धारणा को बल मिला कि जापान और अमेरिका की ब्याज दरों के बीच अंतर निकट भविष्य में कम होने की संभावना नहीं है। बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में येन की बिकवाली और डॉलर की लिवाली हुई। आखिरी बार जुलाई 2024 में येन की कीमत में इस स्तर तक गिरावट आई थी। एनएचके को पता चला है कि जापान सरकार वित्त वर्ष 2040 तक एआई और अन्य प्रमुख सामरिक क्षेत्रों में लगभग 3,700 खरब येन यानी 20 खरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। सरकार की विकास रणनीति परिषद ये योजना तैयार कर रही है और इसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की ओर से निवेश किया जाएगा। परिषद ने जापान की भावी आर्थिक सुरक्षा के लिए 17 अहम क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें एआई और सेमीकंडक्टर, पोत निर्माण और अहम खनिज शामिल हैं। अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी निवेश किया जाएगा। निवेश रणनीति को और विस्तृत रूप देने के लिए परिषद की बैठक अगले सप्ताह के शुरू में होने की उम्मीद है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। मोदी ने पश्चिम एशिया में जहाजों पर सवार चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग का आह्वान किया। उनकी ये टिप्पणी ओमान के निकट इसी महीने के शुरू में एक व्यावसायिक जहाज पर हुए अमरीकी हमले के बाद आई है, जिसमें भारतीय चालक दल के 3 सदस्य मारे गए थे। मोदी ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे चालक दल के सदस्यों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे। इस पर अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, ये एक कठिन पेशा है, ऐसा हमेशा से होता रहा है, लेकिन हम सब मिलकर काम करते हैं। कारोबारी मुद्दों के कारण भी भारत और अमरीका के बीच संबंध जटिल हो गए हैं। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल की खरीद के कारण भी भारत पर भारी शुल्क लगाए थे। जापान के अणु बम उत्तरजीवियों का समूह निहोन हिदांक्यो अगले साल ये निर्णय ले सकता है कि समूह को जारी रखा जाए या भंग कर दिया जाए। हिबाक्षा के नाम से जाने जाने वाले उत्तरजीवियों की काफी उम्र हो चली है। परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इस समूह को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो में बुधवार और बृहस्पतिवार को समूह की नियमित आम बैठक में समूह के भविष्य पर भी चर्चा हुई। सभा में एक प्रस्ताव ये रखा गया कि जो लोग हिबाक्षा नहीं है, जैसे उत्तरजीवियों के बच्चे और पोते पोतियां, उन्हें समूह जारी रखने की अनुमति दी जाए। दूसरा प्रस्ताव ये था कि जब हिबाक्षा उच्च पदों पर सेवा करने में असमर्थ हो जाएं, तब समूह को भंग किया जाए। बैठक में समूह की क्षेत्रीय शाखाओं के भविष्य से संबंधित एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य हिरोशिमा और नागासाकी स्थित संगठनों को स्थायी नागरिक समूहों के रूप में बनाए रखना है, जबकि अन्य को क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर तय करने का अधिकार देना है कि वे अपना संचालन जारी रखना चाहते हैं या नहीं। इन प्रस्तावों पर अगले 12 महीनों में चर्चा की जाएगी। अगले वर्ष की नियमित आम बैठक में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे जाने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर जापान के हेयर सैलून गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए ग्राहकों के बाल ठंडे ठंडे शैम्पू से धो रहे हैं। यामागाता प्रीफेक्चर में लगभग 300 हेयर सैलूनों ने बृहस्पतिवार से ये सेवा प्रदान करनी शुरू की। ग्राहकों के बाल धोते समय फ्रिज में रखे मेंथॉल शैम्पू या बर्फीले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओनुमा कोइची ने करीब 20 साल पहले इस ग्रीष्मकालीन सेवा की शुरुआत की थी। यामागाता शहर में उनकी दुकान ग्राहकों के अनुरोध पर उनके सिर पर कसी बर्फ छिड़कती है। ये सेवा 18 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। ओनुमा के अनुसार गर्मियों की ये खास सेवा देश विदेश से लोगों को आकर्षित कर रही है और वे इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये शैम्पू लोगों को ठंडक प्रदान करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान काफी अधिक रहने की आशंका है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 16वें पाठ में सीखेंगे अपनी राय बताने और समझाने का नया तरीका।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो गर्म पानी के कुंड को देखने आई है जो उसमें नहाते बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी दंपति ने मिया को तस्वीरें खींचते हुए देखा और उससे बात करने लगे।
0: तो आइए सुनते हैं 16वें पाठ की बातचीत।
2: たくさん写真を撮っているのね。
3: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने हैरान होते हुए कहा,
3: सर がいっぱい।
1: वाह, इतने सारे बंदर।
0: वो तस्वीरें खींचने में डूबी हुई थी कि तभी वहां पर्यटन के लिए आई एक जापानी दंपति ने उसे आवाज लगाई। पहले महिला ने कहा,
2: ताकुसान शाशी वो तो तेरु नो ने।
1: आप बहुत सारी तस्वीरें खींच रही हैं।
0: मिया ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी,
3: ここは海外でも有名な温泉です।
1: ये ओनसेन विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
0: उसके बाद पुरुष ने कहा,
4: हे सो नंदा।
0: अच्छा, ऐसी बात है।
4: सरगा ओनसेन में हाइरु नो वा मेजुराशी करने।
0: ओनसेन में बैठे बंदर आम नहीं है, इसीलिए ना।
1: तभी मिया को कुछ दिखाई दिया और उसने कहा,
3: सर नो अकाचा।
1: अरे, बंदर का बच्चा।
3: कवाई,
1: कितना प्यारा है।
0: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
1: तो आज का मुख्य वाक्य है,
3: यूमेना ओनसेन देसु,
1: यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: यूमेना
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
5: ओनसेन
0: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड। और
5: देस
0: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: कवाई
1: यानी प्यारा।
0: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
5: यूमेना
0: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं,
5: यूमेना ओनसेन
0: का मतलब है प्रसिद्ध ओनसेन।
1: ना विशेषण का उपयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। ऐसे में अंत का ना हटाकर उसकी जगह देस लगाते हैं, तो
5: यूमेना
1: से बनेगा
5: यूमे देस
1: यानी प्रसिद्ध है।
0: अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लें।
5: यूमेना ओनसेन देस, यूमेना ओनसेन देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं।
6: गेंकी नासारु देसु ने।
7: होंतो गेंकी देसु ने।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
6: गेंकी नासारु देसु ने।
1: कितना फुर्तीला बंदर है ना।
0: यहाँ
5: गेंकी ना
0: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
5: सारु
0: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने, जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ओंतो गेंकी देसु ने,
1: सचमुच फुर्तीला है।
0: इस वाक्य में
5: होंतो
0: का अर्थ है सचमुच, ये सहमति दिखाता है, और उसके बाद विशेषण
5: गेंकी ना
0: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
5: गेंकी देसु।
1: तो सुनिए और दोहराइए,
5: गेंकी ना सारु, गेंकी ना सारु देसु ने, गेंकी देसु ने।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है। आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं, शांत जगह है ना? शांत के लिए जापानी शब्द है
5: शिज़ुकाना,
0: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बाशो।
0: तो कोशिश कीजिए,
8: शिज़ुकाना बाशो देसु ने, शिज़ुकाना बाशो देसु ने।
1: अब मान लीजिए आप बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं सुंदर दृश्य है ना? सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
5: किरेना,
1: और दृश्य का जापानी शब्द है
5: केशिकी।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए,
7: किरेना केशिकी देसु ने, किरेना केशिकी देसु ने।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए,
4: हे
5: हे।
1: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
0: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए,
5: हे।
1: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
7: सारु ना इप्पाई,
2: ताकुसान शाशिन वो तोत्ते इरु नो ने।
3: हाई, ここ वा काइगाई देमो यूमे ना ओनसेन देसु।
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
7: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
0: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
1: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
0: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
1: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
0: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 सरबराही इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बुध को बातचीत की है। मोदी ने मशरक़ वस्ती में बहरी जहाज़ों पर सवार अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने में तआवुन पर जोर दिया। उन्होंने ये बात कबल अज़ां रवां माह अम्मान के साहिल पर एक तजारती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद कही है। मज़कूरा हमले में अमले के 3 भारतीय अरकान हलाक हो गए थे। मोदी ने कहा कि आलमी समुंदरी तजारती रास्तों पर बहरी अमले के लाखों भारतीय कारकुन काम कर रहे हैं और उनकी हिफाजत हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उनके पास अमले के अरकान के गमजदा ख़ानदानों के लिए ताज़ियत के अल्फाज हैं। अमरीकी सदर ने ये कहते हुए जवाब दिया कि ये एक कठिन पेशा है। इसके बाद उन्होंने मज़ीद कहा, ये हर वक्त होता रहा है लेकिन हम मिलकर काम करते हैं। भारत और अमरीका के ताल्लुकात तजारती मसाइल की वजह से भी पेचीदा हो चुके हैं। पिछले साल ट्रंप इंतजामिया ने भारत पर भारी महसूलात आयद किए थे, जिसकी जुजी वजह भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी थी। एटम बम हमलों से जिंदा बच जाने वाले जापानियों की तंजीम निहोन हिदानक्यो अगले साल ये फैसला करेगी कि इसे बरकरार रखा जाए या तहलील कर दिया जाए। बच जाने वाले इन लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है और ये सब उम्र रसीदा हो रहे हैं। इस ग्रुप ने सन 2024 में जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के हुसूल की कोशिशों पर अमन का नोबल इनाम जीता था। टोक्यो में बुध और जुमेरात को बाकायदा जनरल मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एक मौजू ग्रुप का मुस्तकबिल था। इज्तमा में पेश की गई एक तजवीज़ ये है कि गैर हिबाकुशा अफराद जैसे जिंदा बच जाने वालों के बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों को ग्रुप जारी रखने की इजाज़त दी जाए। दूसरी ये कि अगर हिबाकुशा आला ओहदों पर काम जारी नहीं रख सकते तो ग्रुप को ख़त्म कर दिया जाए। इस इजलास में ग्रुप की मकामी तंजीमों के मुस्तकबिल पर भी एक तजवीज़ पेश की गई। इस तजवीज़ का मकसद हिरोशिमा और नागासाकी में तंजीमों को मुस्तकिल शहरी ग्रुपों के तौर पर बरकरार रखना है, जबकि दीगर को ये फैसला करने की इजाज़त देना है कि वो मकामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जारी रहने या तहलील होने का फ़ैसला करें। इन तजावीज़ पर अगले 12 महीनों में गौर व खौज किया जाएगा। फैसला अगले साल की बाकायदा जनरल मीटिंग में होने का इम्कान है। शिमाल मशिकी जापान में हेयर सैलून्स ने सार्फिन को गर्मी से निमटने में मदद के लिए ठंडे शैम्पू पेश करना शुरू कर दिए हैं। यामागाता प्रिफेक्चर में हजामत की तकरीबन 300 दुकानों ने जुमेरात से इस सर्विस का आगाज किया। हजाम अपने ग्राहकों के बाल धोते वक्त ठंडे मैंथोल शैम्पू या बर्फीले पानी का इस्तेमाल करते हैं। ओनुमा कोइची के ख्याल पर मबनी मौसम गर्मा की इस रिवायत का आगाज 20 साल पहले हुआ था। यामागाता सिटी में उनकी दुकान पर सारिफ अगर चाहें तो सर पर छिली हुई बर्फ का छिड़काव करवा सकते हैं। ये सर्विस 18 सितंबर तक दस्तियाब रहेगी। ओनुमा ने कहा कि मौसम गर्मा की ये खास पेशकश जापान और बैरून मुल्क से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है और वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शैम्पू से लोगों को ठंडक मिलेगी क्योंकि कई दिनों तक गर्मी ज़्यादा रहने का इम्कान है।
1: और सामिन, आखिर में ख़ास खबरों का खुलासा। वाशिंगटन और तेहरान के रहनुमाओं ने अपने तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये मुहायदा नाफिस हो गया है। अमरीकी शरह सूद में इजाफे की क्या सारायों पर डॉलर के मुकाबले में जापानी येन की कदर तकरीबन 2 सालों की कम तरीन सतह तक गिर गई।